0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी एकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य चाडू
3: हेमा बिही के आलाम ऐता
4: हुंगाऊं
3: रोगा जहों
4: केसुं
3: लोरेवों
4: हमुगा अरब बिही तकिरने गुं
3: आमको बिही ता फुरतम नगानी मूना कारुगा ये फो मेमती बुरकशी आतुगा अधे ये फो फैगा
4: हिमा बिही के आलामते फेनी जनमा लसनुकुरवा सही फरवा होदवा
2: राज्य के कोमे हिसाबे गहुरी के बस एवज आगे देखो मकानुला पीएसएम के चैनल ता फोनु अड़ो हाला बलालुमा फसे हगोते
5: पीएसएम एआर
6: दिवे राज्य के अड़ा दीनु के अड़ो अधि दिवे एफएम बस अड़ो हाल वेने
2: टीवीएम यस टीवी अधि पीएसएम न्यूज़ बलाले में
5: पीएसएम एआर
6: आईओएस अधि एंड्रॉइड फोन तकुं डाउनलोड करे वेने
2: पीएसएम एआर
6: आवाह फोन डाउनलोड करवा

काफिरों के गाते हिंग जनम दिन थे बैमी हूँ हंगुराम को गनीमा गे मुदा लिबमु फहें एवरेंगे किबई एवरेंगे अम्बिंग गुस्फावा मीहुन एवरें रणुगे गुतगा हेद कुरिफद इच्छे थे बैमी हूँ ए गनीमा इन देश आदि थे बैमी हूँ एकलांगे ईमा विगंवा खलांगे खमगावा अल्लाह थे बैमी हूँ थकवा विरवाशे।

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी एकार गड़ फनर है रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकने दिवे ही राज्य चाडूं
3: दत्ता कोलम नोरे में गंडी गई शींदे आहारें कोलम हो रहा फाना दत्ता ही शींदे
4: हाँ जंगले खोको बड़ा बड़ा शुक्रिया
3: कुद्दे वे कुड़ा कुड़ा है वो कमकों ऐहम मी है केदा तोरो अमावे उफावेरी बेदाने
5: हिमा भी जहिफा वामी हकु कैसा किं भी हेलमों वैगे तेरे वायरस फेतुरे गेंदियों हिमा भी फेतुरे बंदो ताने गानमा देगा डेरेंग हायर वंदें वैगे तेरे का वायरस होरे
6: वायरस के असर होरे ताने का एल्लुम फो लोला नेफता आंगेगा एल्लुमों हिमा भी फेतुरे
7: बाया देखो ला दिफा इबार निम्मी हूँ आदि मीसल्स वैक्सीन के दे डोज फुरी हमको फानुआ फरात का बाली जहमुगे फुरसत बड़ो हिमा भी के आलामते फेनिजनमा लसनुकुरवा सिही फरवा हो दवा
2: फोनी करुना
8: अनेकावस बप्पा हुट्टाली फलके लिबे हासकन दिए इतुर बमुन्ने
2: मम्मा वाहक
8: युपन लिबे हिंदु माँ बनुं थोले मुं एदायरु ही बे
2: जखम
9: यह हागो दुनु कोंगुले कन्नुमा
8: रोईफावा आड़कुन साउदिया बुन्ये
2: ಮಿಫದ ಅಸರುಗದ ರೀತಿ ವಾಹಕತ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡುಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಿಹಾರು ಅಡೋಸ್ವಾಲಿ ಫೇರೆ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡುಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೊಲ್ಲವ್ವ
10: ಗಾರ್ಡಿನ್ ರೇಗಂಡು ದಿಹೆ ಜಹಿ ಅಡೋ ಸಮಿತಿಯಾಗಿಂದವಣಿ ದಿವಿರಾಜ್ಯಗೆ ಅಡು

0: मुन्ना कोबा की है ना क्या देड़ा ही है
1: अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना रंगल खालो में देड़ा ही है
0: अफनस देड़ा ही है मुन्ना मुन्ना कोम वडा में क्या दक काफुंग अता
2: मुन्ना थी है बरको वेंडा हिंका में ने अफन तिकन कोलन
1: तिकु दुं हावदा है रंगल लाए तिहें मुन्ना एक ही आहो हाल बला फे मुन्ना रकांकां को देन्ना है दी मुन्ना वरहा उपावे